रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: ये स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा है?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उसपे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ, आपसे रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ।
3: एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके हो
5: पास
3: क्या है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501। हाँ सर, 33501 है।
3: हेलो
5: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है।
3: मेरी
5: बात सुनिए ना,
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
8: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
8: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं कुकड़ू को।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो और इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे

इश्क बिना भी पार्टी चलती है, क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम।

मिर्ची वेंडी जन रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, आप बोलो या ना बोलो, ग्रूव एंड बीट्स यहाँ पे बोलती है नॉन स्टॉप। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप ब्रेक लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना,

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. तुम मेरे ना हुए बट दिस प्लेलिस्ट डेफिनेटली इज, एंड फॉर दैट क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करेंगे नॉनस्टॉप.

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन लव मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है टीचर रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो, रेडियो पे तो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मई, हिज बर्थडे वाज ऑन 1st, सो हे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

के नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो अंतिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके
4: पास
2: है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. आई जस्ट माइट प्ले दर्द डिस्को नाउ फॉर यू. लेट्स गो.

0: now ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश. इनफैक्ट इंटरनेशनल है हम बॉस. क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी. द बेस लाइन्स टू गुड.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये ये।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: था? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

फ्यूचर एंड मैच्योर यो देगा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है। और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ऑल यो देगा AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट हिट हिट हिट गाना।

0: Radio Mercy, New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है, और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ओयो देगा, AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड

प्यार पे वारी जवा क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा फिलहाल तो शरारत लेवल हाई इनोसेंस ऑन एयरप्लेन मोड लेट्स गो वी हैव शरारत

0: Figure this, understand what your downloads folder contains. Installers, software drivers, important documents, files you saved just in case. Unlike the recycle bin, these files are not moved anywhere first. If Windows deletes them based on this rule, they're gone. No second chance. Here's what not to do. Don't set this to 1 day or 14 days, thinking you'll stay organized. You won't, and you'll lose something important. My recommendation, leave this on never. Let Windows automate the recycle bin, but your downloads folder? You control that manually. If you genuinely want automation here, set it to 60 days minimum. That gives you enough of a buffer to catch anything you actually need. One last thing. Scroll all the way down on this page. You'll see a button, Run Storage Sense Now. Click this if your drive is already cluttered. It runs an immediate cleanup based on every rule you just set up. It's your manual override, useful when you can't wait for the next scheduled run. Quick recap of what you just did. You switched Storage Sense on. You set a proactive schedule instead of leaving the useless default. You configured your recycle bin to auto-clear after 30 days. And you protected your downloads folder from accidental deletion. Windows will now run its own maintenance, silently, on schedule, completely hands-free. Now, Storage Sense handles the automatic cleanup, but there's an entire category of hidden junk it doesn't touch. Temp files buried in system folders.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो
1: Who's this?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे Who's this?
1: कौन बोल रहा है
2: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
1: क्या मजाक चल रही है
2: क्या मजाक चल रहा है ये सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
3: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड क्लब मिर्ची

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो और इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे

महबूब हो या मूड, दोनों को ही टेक केयर करेंगे हम ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंते का। थोड़ा डोप शोप हो जाए अभी।

0: still not ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है बस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेसलाइन्स टू गुड

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके पास
4: पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना होता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश. इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस. क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेस लाइन

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची।

इश्क बिना भी पार्टी चलती है, क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम।

लव क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। आप बोलो या ना बोलो, ग्रूव एंड बीट्स यहाँ पे बोलती है नॉन स्टॉप। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप ब्रेक लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका. तुम मेरे ना हुए बट दिस प्लेलिस्ट डेफिनेटली इज, एंड फॉर दैट क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करेंगे नॉनस्टॉप.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन
2: Club Mirchi.

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो, रेडियो पे तो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मे, हिज बर्थडे वाज ऑन 1st, सो हे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

उनके नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो अंतिका, आपकी लाल परी।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज़ दिस,
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रहा है?
3: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
2: हिट

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। आई जस्ट माइट प्ले दर्द डिस्को नाउ फॉर यू। लेट्स गो।

Ready for this? मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है हम बॉस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेस

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।
1: You

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafis wala murga.
2: Mirchi, murga. Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: गया है।
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है।
2: हेलो
4: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका, तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना होता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था।

0: उन्होंने कहा था
1: अरे खुकड़ू को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो।

करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे DJ Richard Official, that's him, and Ayontika, AYNTIK, that's me on Insta and Facebook.

Feel finished.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: दूसरा गाना सुपर हिट
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ओयो दिगा, AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा।

एमेच्योर एंड मैच्योर यो देगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है, और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे DJ Richard Official, that's him, and Oyontika, AYNTIK, that's me on Insta and Facebook.

0: Don't hurt you.
1: Finished.

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: It's Chicago, baby.
1: और इसी हाई नोट पे वॉल्यूम थोड़ा कम, यादें फुल लाउड लेके एग्जिट मारेंगे. लेकिन जाने से पहले साइन ऑफ ट्रैक आपके लिए, शिकागो बेबी. वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. एंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बस पॉज होनी नहीं चाहिए आपकी डांसिंग. कैच यू ऑन द नेक्स्ट ड्रॉप.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूज

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए
3: सर। हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस
4: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: Milci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. La vie va la murga. Milci, murga.
1: Hello.
2: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास, आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
3: नहीं तो
1: थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं खुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: हुआ झुमका?
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
4: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: हूँ? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
2: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल, जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है, और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं, और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। सो आई डोंट थिंक आई डोंट मिस एनीथिंग।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या? वो दब गए, दे वर फॉरगॉटन। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान। दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हू इज दिस
1: कौन बोल रहा है
2: यार ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
1: क्या मजाक चल रही है
2: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
3: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: नंबर 7
6: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। On a very special request, this is James with Bheegi Bheegi.
1: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक डैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। That's it, that's his subscriber count। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक डैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा. अगेन नंबर टू दिस वीक. माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट. तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ. बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है. वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं. और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं.
1: Hollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है. जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ. एंड देन और फिर एक और कहानी आती है. December 5, 2025 धुरंधर. March 19, 2026 धुरंधर 2. रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं. आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं. वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो. ऑर्गेनिक पीआर? Again, absolutely zero. सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज. 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर. और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर वन है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर. करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ. एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट. They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1. Number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर सेवन
3: से वो

ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: ये स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी?
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उसपे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
4: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा
2: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
7: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
8: थैंक यू
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता, बस यूट्यूब पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे, दैट्स इट, दैट्स हिज सब्सक्राइबर काउंट। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। द सॉन्ग इज इन सॉफ्ट, इट्स नॉट जेंटल, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: Number 2.

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेन सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म, एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price, and that is something that could be deeply upsetting, because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me, and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? Again, absolutely zero. सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर। और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर वन है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.
2: Number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: are you?
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
5: आपके
3: हो
5: पास
3: क्या है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा?
3: 33501।
5: हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के थोड़ी ना होता है।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
8: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
8: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं खुकड़ू को।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: Uh-huh.

0: Milci.
1: Pusca bana, pusca bana, saca bana. Rabana. Burga, burga. La vid bala burga. Milci burga.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
0: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा
1: 33501?
3: हाँ सर, 33501 है।
1: हेलो
3: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किस किस से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह मचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Milchi, murga.
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा
10: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
11: थैंक यू।
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Yambala. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है?
3: और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये।
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़ गए। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: सुन रहे हैं आप बंदी का नाम है आरजे कनिका इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक हेलो एंड वेलकम दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ मेरा हैंडल इज @rjkanika कोई गाना सजेस्ट करना है कोई बातें बतानी हो बिंदास आके हिट मी अप हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना उन्हीं की कॉम्पोजिशन उन्हीं की आवाज गाने का नाम है वोग पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10 उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9 यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका एंजॉय
1: Number 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Vindi ka naam hai RJ Kareka. Instagram par jao, mujhe follow karo. Follow karna ekdam free hai. Mujhe pata hai aap phone hi chala rahe the apna. @RJKareka on Instagram par aake quickly say hello. Koi gana share karna ho bindaas aake hit me up. कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे, बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं, दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ra bana. Burka, burka. Naviyat wala burka. Mirchi burka.
3: Hello.
4: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
5: हाँ जी.
3: हाँ बोलिए.
5: 33501.
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
6: हाय.
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए.
5: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
7: ये बेल जा रही है.
5: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
5: आपके पास
3: है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा?
3: 33501.
5: हाँ सर, 33501.
3: हेलो.
5: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
3: किस किस से पूछे जा रहे?
5: किस से? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर. आपके
3: पास भाई? ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है.
5: ये एटीएम तो आपका, तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना.
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
3: अरे मैं कुकड़ू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
8: ये पटा.
0: Gaana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
9: Number 6.

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां एंड रैविटोर. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो स्वागत है आपका. दिस इज गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक. लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम. कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है. लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है. अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ. मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में. वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची. वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था.
2: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं.
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना. एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे. एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो. आई रिमेंबर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर. इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग. इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए. ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए. उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है. जहां इट डजेंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं. तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा. ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है. दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: What a song! Tanishq Bagchi की composition है, ध्वनि भानुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई. Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक indie pop quiz पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को full confidence है आपको पता होगा. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation गाने का नाम है शीशा. मिट्टर और की आवाज इनकी कॉम्पोजिशन. मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Rana Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. Cricket se lekar soccer ka shor, music, masti and much more. Success aur finance ka dose. Weekdays 8 se 11 har roz. News aur masti ka silsila. Mirchi Mornings with Priscilla.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप टेन
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची
6: नंबर फोर।

धुरंधर रॉकिंग द काउंटडाउन दिस वीक ऑन नंबर 14 एंड रणवीर के साथ यू गॉट सारा अर्जुन, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग एक्टर। और इस नाम ने मुझे याद दिलाई एक और सारा की, सारा अली खान। 2018 केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक डेब्यू हुआ जिसे पूरी इंडस्ट्री ने नोटिस किया, मैंने भी उन्हें नोटिस किया, और उस फिल्म के बाद आई जेन्युइनली बिकेम अ फैन ऑफ सारा अली खान। लेकिन 2026 में पिक्चर क्या है? देयर्स अनन्या पांडे सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, देयर्स जानवी कपूर सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, एंड देन देयर इज सारा अली खान। पति पत्नी और वो दो में शी इज वन ऑफ द टू अफेयर्स। तीन लड़कियां, एक ही दरवाजा, तीन अलग अलग मंजिलें। और इस हफ्ते नंबर 13 पे एक गाना है कॉल्ड आवारा अंगारा फ्रॉम तेरे इश्क में, कृति सैनन का ये गाना है, जो इस जेनरेशन की सबसे कमिटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। ये सब देख के दिल में एक सवाल उठता है यार कि सारा, वो केदारनाथ में दिखने वाली जो कमाल की टैलेंट थी, आखिर वो गई कहां? मैं आज भी मानता हूं वो टैलेंट अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता, परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, चॉइसेस चाहिए होती हैं, एक कमबैक चाहिए होता है जो सिर्फ स्क्रीन पे ना। और उस कमबैक की याद, वो पहली बार, वो केदारनाथ वाली सारा अली खान। ये है इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, जानेसार बाय अमित त्रिवेदी। टॉप 20 रिवाइंड।

पति पत्नी और वो दो से रूप दी रानी अपने दूसरे हफ्ते में है यूर ऑन नंबर 12 एक फिल्म चीटिंग के बारे में ग्लैमरसली हैप्पीली एंड कॉमिकली। हाय मैं हूँ सुरेंद्र सुंदरम और अभी जो आने वाला है नंबर 11 पे वो भी उसी दुनिया से है जवानी तो इश्क होना है। गाने का नाम है ब्याह करवा दो जी, ग्लॉसी कैची एंड इक्वली फॉरगेटेबल। और मैं जानता हूँ 2 महीने बाद ये गाना कोई नहीं सुनेगा। कैन आई बी ऑनेस्ट हियर, यार मैं थक गया हूँ। बीवी नंबर 1, नो एंट्री, दे दे प्यार दे, मर्डर, गहराइयां, कभी अलविदा ना कहना, और अब ये एक ही कहानी बार बार, अलग चेहरे, अलग गाने, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। और सच ये है कि हम और मैं भी इस हम में शामिल हूं। हम अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। हम सोचते हैं कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं चाहती, उन्हें चाहिए सिर्फ चमक, उन्हें चाहिए सिर्फ शोर। वो लिसनर जो कानपुर में बैठा हुआ है, वो लिसनर जो दुबई में है, वो उतनी ही गहराई मांगता है जितनी कोई मांग सकता है, लेकिन हम उन्हें देते हैं क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है कॉम्प्लेक्स लिखने की, कॉम्प्लेक्स दिखाने की, कॉम्प्लेक्स फील करने की। और जब कहानी में गहराई नहीं होती तो गाने में भी नहीं होती। इसलिए सैयारा जैसा गाना एक याद बन जाएगी मगर व्याह करवा दो जी नहीं बन पाएगी। फर्क सिर्फ फिल्म मेकर्स की गट्सी चॉइसेस का होता है और अभी वो गट्स कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा काम है हर हफ्ते इस स्टूडियो में आपके लिए बेस्ट गाने ढूंढना उस शोर में से। और इस हफ्ते नंबर 11 पे है ये व्याह करवा दो जी, तब है जवानी तो इश्क होना है।

यार ये गाना चांद मेरा दिल जैसे ही चलता है मेरे दिमाग में एक और ही गाना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही गाना चल रहा होता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और शायद कुछ करना भी नहीं चाहते। क्या

यू नो कोइंसिडेंस क्या है कि ऋषि कपूर साहब की वो फिल्म हम किसी से कम नहीं, वो गाना, वो फीलिंग, इट फील्स सो फ्रेश इवन नाउ। और यही तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बोलता। हमारे सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स, वो भी उसी फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग ए सन रणबीर कपूर, क्योंकि पापा की विरासत मिली जीन्स में, सरनेम में, लेकिन पहली बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने सीधा पापा का गाना ले लिया। बचना

0: से जुदा।
1: बचना है हसीनों, पूरी एक जेनरेशन नाच रही थी और उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ये तो उनके अंकल ऋषि कपूर का गाना है। एंड देन यू गॉट शाहरुख खान, जिन्होंने किया वही काम जो सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं। उन्होंने ऋषि सर का एक और गाना लिया और उस पर एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी।

0: ओम शांति ओम। 2007 अ ब्लॉकबस्टर, एक गाना जो लगभग 50 साल पहले लिखा गया था और शाहरुख ने उसे इमॉर्टल बना दिया। ऋषि कपूर इजंट विद अस एनीमोर, मगर बॉलीवुड उन्हें कभी भूलने नहीं देगा एंड आई लव देम फॉर इट। इट विल कीप हिम अलाइव। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 9 पर इस हफ्ते है सैयारा, जिसका दिल मोहित चौहान की उस आवाज में धड़कता है जो एक था टाइगर में सुनाई दिया था। पुरानी रू नया टेक, हमेशा से हमेशा तक। दिस इज सैयारा बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 9।
1: नंबर 9।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर सेवन।
3: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दा ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस
2: कौन बोल रहा है
3: यार ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
2: क्या मजाक चल रहा है
3: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
4: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़िया और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: हिप अटैक
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

तेज हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। That's it, that's his subscriber count। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की ये कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई। लेकिन अभी के लिए, इस फीलिंग के लिए, एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना। हिट

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म, एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievements speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid for it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो। सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर 1 है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।